0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 14 मई 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रीट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर एक कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों, आज मुझे बताइए कि बजट में कौन सी ऐसी घोषणा है जिसने आपको बड़ा खुश किया है। 0439799767 हमारा नंबर है। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार। इसके बाद लेकर के आऊंगी अलग अलग बहु सांस्कृतिक समुदायों की फेडरल बजट पर आई प्रतिक्रिया को। इसके बाद बहु सांस्कृतिक समुदायों पर नए बजट के प्रभाव को लेकर नताशा कॉल की बातचीत रहेगी मंत्री एन आली के साथ। इसके बाद बात करेंगे स्वास्थ्य की और अंत में लाऊंगी फिल्मी डायरी में श्रद्धा कपूर के किस्से। आज आपको मुझे ये बताना है कि भाई हाल में आए बजट में कौन सी ऐसी घोषणा रही जिससे आप बड़े खुश हुए। 0439799767 हमारा नंबर है। भेजिए मुझे संदेश, तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ACCC ने कहा है कि कोल्स के डाउन प्राइस कैंपेन पर फेडरल कोर्ट का फैसला सभी रिटेलर्स के लिए एक चेतावनी है कि वे कीमतों और डिस्काउंट से जुड़े दावों में पारदर्शिता बरतें और सटीक रहें। फेडरल कोर्ट ने पाया कि सुपरमार्केट ने ग्राहकों को नकली छूट दिखाकर गुमराह किया। जस्टिस माइकल ओब्रायन ने मामले में जांचे गए 14 में से 13 प्रमोशंस को असली डिस्काउंट नहीं माना। ACCC का आरोप था कि कोल्स ने पहले कुछ उत्पादों की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ाई, फिर उन्हें थोड़ा कम करके भी मूल कीमत से ऊपर रखा और बाद में उसे स्पेशल ऑफर के तौर पर प्रचारित किया। ACCC की चेयर जीना कैस गॉटलिब ने कहा है कि ये फैसला कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा और दूसरे रिटेलर्स के लिए इससे सबक भी मिलेगा। जुर्माने की राशि पर फैसला बाद में होगा। कोल्स पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इसी तरह का ACCC का मामला वूलवर्थ्स के खिलाफ भी चल रहा है जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन का कहना है कि अगर वे अगला चुनाव जीतते हैं तो वे गैर नागरिकों के लिए कुछ सरकारी सहायता योजनाओं में कटौती करने का प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष नेता एंगस टेलर ने अपने पहले बजट जवाबी भाषण से पहले कहा है कि गठबंधन गैर नागरिकों जिनमें स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंट भी शामिल है की 17 तरह की सामाजिक सहायता योजनाओं तक पहुँच सीमित करेंगे। इनमें NDIS और पेरेंटल लीव जैसी योजनाएं भी शामिल है। फिलहाल परमानेंट रेसिडेंट और प्रोटेक्टेड स्पेशल वीजा धारकों को NDIS की सुविधा मिल सकती है, हालांकि इसके लिए अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीन्स नेता डेविड शूब्रिज ने कहा है कि ऐसी नीति ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा निष्पक्ष या बेहतर समाज नहीं बनाएगी। और विक्टोरिया के प्रीमियर जेसिंटा एलन ने फेडरल सरकार के उस फैसले का बचाव किया है जिसके तहत विक्टोरिया सरकार की सबर्बन रेल लूप परियोजना के लिए 3.8 अरब डॉलर दिए गए हैं। वहीं क्रिसमिन्स ने कहा है कि देश की लगभग 31% आबादी न्यू साउथ वेल्स में रहने के बावजूद उनके राज्य को फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का केवल 17.7% हिस्सा मिलता है। क्रिसमिन्स ने कहा कि वे फंडिंग में इस अंतर को लेकर चुप नहीं रहेंगे और पार्टी से पहले अपने राज्य के हितों के प्रति वफादार रहेंगे। आलोचनाओं के जवाब में जेसिंटा एलन ने कहा कि दूसरे बड़े राज्यों की तुलना में विक्टोरिया के पास टैक्स से राजस्व जुटाने के विकल्प कम हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से प्रभावित क्रूज जहाज पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे कल ऑस्ट्रेलिया लौट सकेंगे। उन्होंने पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय ने यात्रियों को वापस लाने के लिए उपयुक्त विमान की व्यवस्था कर ली है। ये यात्री आज रात नीदरलैंड से रवाना होंगे और शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। मार्क बटलर ने कहा कि लौट रहे यात्रियों में फिलहाल किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी दोबारा जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें 3 सप्ताह के क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उनके सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया। करीब 9 वर्षों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चाइना यात्रा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में चाइना का दौरा किया था। बीजिंग के कई लोगों ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेताओं की ये मुलाकात सकारात्मक नतीजे लेकर के आएगी। और अंत में खबरें भारत से। भारत में बढ़ते ईंधन संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्क फ्रॉम होम नीति को बढ़ावा देने की अपील के बाद देश के कई राज्यों में असर दिखने लगा है। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू कर दी है। नए नियम के तहत ग्रुप सी और डी के केवल 50% कर्मचारी ही रोज दफ्तर जाएंगे, जबकि बाकी घर से काम करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को प्राथमिकता देने और मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है। सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल देश भर में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की कोई नीति नहीं ला रही है। इसी के साथ 14 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और अब संक्षिप्त समाचार के बाद आइए चर्चा करते हैं बजट पर आई प्रतिक्रियाओं की। भाई साल 2026 के फेडरल बजट में प्रवासन, विकलांगता सहायता और फर्स्ट नेशन समुदायों से जुड़े कई बड़े बदलाव और निवेश शामिल किए गए। हालांकि सरकार ने इन कदमों को सुधार और समर्थन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन कई समुदाय संगठनों ने इनके प्रभाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या हैं ये प्रतिक्रियाएं, आइए सुनते हैं इस अंश में। साल 2026 का फेडरल बजट घोषित कर दिया गया है, जिस पर अलग अलग समुदायों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विकलांगता, बहुसांस्कृतिक और इंडिजिनस समुदायों से जुड़े क्षेत्र के नेताओं ने इस वर्ष के बजट और उससे उनके समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अपनी राय साझा की है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं इस अंश को विस्तार से। फेडरल सरकार श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए अपनी स्थायी प्रवासन यानी परमानेंट माइग्रेशन की प्रणाली में बदलाव कर रही है, ताकि अधिक शिक्षित, उच्च कौशल वाले और कम उम्र के प्रवासियों का चयन किया जा सके। स्थायी प्रवासन कार्यक्रम की सीमा 1,85,000 स्थानों पर ही बनी रहेगी, जिनमें से 70% से अधिक स्थान कुशल प्रवासियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकार कुशल और पारिवारिक दोनों श्रेणियों में विदेश से आने वाले आवेदकों की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे प्रवासियों के आवेदनों को प्राथमिकता देगी। फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी फेका का कहना है कि उसे इस बात से राहत है कि प्रवासन संख्या में कटौती नहीं की गई है। हालांकि संस्था के अध्यक्ष पीटर डूकस का कहना है कि फेका को इन बदलावों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता है।
3: I mean, we're looking at this very carefully. Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So, over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about the brand of Australia as an open and embracing country. So for us, we're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
2: कौशल आकलन और पेशेवर लाइसेंस प्रक्रियाओं को तेज किए जाने के बाद हर साल अतिरिक्त 4,000 प्रवासी ट्रेड वर्कर्स कार्यबल में शामिल हो सकेंगे। उम्मीद है कि इससे लोगों को कार्यबल में प्रवेश करने में लगने वाला समय कम से कम 6 महीने तक घट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की प्रवासन प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करेगी। ऐसे मामलों का निराकरण जिन्हें सरकार संरक्षण वीजा यानी प्रोटेक्शन वीजा प्रणाली का दुरुपयोग बताती है के लिए 7,42,00,000 डॉलर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत फेडरल और पारिवारिक अदालतों में मेरिट और न्यायिक समीक्षा प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को अतिरिक्त 1,98,00,000 डॉलर की फंडिंग दी जाएगी ताकि वे ऑस्ट्रेलिया के भीतर और विदेशों से आने वाले छात्र वीजा आवेदनों की जांच क्षमता को बढ़ा सकें।
3: Onshore and offshore visa applications for students are heavily restricted at the moment, and I think that that adding further restrictions to this undermines our world-class education sector that was once in the top 5 export industries that we had, and ultimately has the danger of contributing to a brain drain if we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
2: विकलांगता देखभाल के क्षेत्र में सरकार ने बजट में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS तक पहुंच में कटौती संबंधी बदलावों की पुष्टि की है। इसका उद्देश्य अगले 4 वर्षों में लगभग 38 अरब डॉलर की बचत करना है। पात्रता तय करने के लिए एक मानकीकृत आकलन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर द्वारा पहले ही घोषित इस बदलाव के कारण अनुमान है कि लगभग 1,60,000 लोगों को इस योजना से बाहर किया जा सकता है। चेरिबिलोसिस डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क में नीति वकालत और कार्यक्रमों की प्रमुख हैं।
4: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well as seeing a reduction to plans as well.
2: NDIS के दायरे से बाहर बुनियादी सहायता सेवाएं स्थापित करने के लिए 5 वर्षों में 3 अरब डॉलर भी निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के अनुसार इस राशि के बराबर योगदान राज्य और क्षेत्रीय सरकारें भी देंगी। लारा किसन नेशनल एथनिक डिसेबिलिटी अलायंस की कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। उनका कहना है कि NDIS में धोखाधड़ी रोकने के लिए फेडरल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, खासकर बहुसांस्कृतिक समुदायों में।
5: We recognize the government's focus on sustainability and integrity in the NDIS. And NDIS participants from culturally and linguistically diverse backgrounds are often more vulnerable to provider fraud, and we support any steps to address this issue. With the other announced changes, the impact is really going to hinge on how the changes are rolled out. Culturally and linguistically diverse participants are already more likely to face system navigation barriers and limited access to advocacy. So changes to eligibility or funding could increase the risk of confusion, disengagement, and even the spread of misinformation.
2: पहले घोषित की जा चुकी एक विकलांगता सहायता योजना Thriving Kids के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 अरब डॉलर निर्धारित किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,40,00,000,000,000 डॉलर राज्यों और क्षेत्रीय सरकारों को दिए जाएंगे। ये योजना विशेष रूप से 8 वर्ष से कम आयु के ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए होगी। सरकार मंगलवार के बजट के तहत अगले 5 वर्षों में फर्स्ट नेशन समुदायों और क्लोजिंग द गैप पहल के लिए 1.2 अरब डॉलर का निवेश भी कर रही है। स्नेक देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है जो इंडिजिनस बच्चों के अधिकारों और हितों के लिए काम करती है। सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैथरीन लिडल का कहना है कि वे चाहती थी कि इस बजट में इंडिजिनस बच्चों के समर्थन के लिए और अधिक कदम उठाए जाते।
6: I think this budget was flagged as the budget for generation fairness for Aboriginal children and families. It's the budget of missed opportunity. There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal Torres Strait Islander children and families and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
2: Closing the gap funding ke tehet 29,90,00,000 डॉलर रिमोट जॉब्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करना है। जेंडर्ड वायलेंस यानी लैंगिक आधारित हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के लिए 21 करोड़ 80 लाख डॉलर भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अबोरिजिनल समुदायों द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना पर 14 करोड़ 40 लाख डॉलर की नई फंडिंग दी जाएगी। शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने के कार्यक्रमों के लिए 11 करोड़ 30 लाख डॉलर आवंटित किए गए हैं। कैथरीन लिडल ने समुदाय नियंत्रित और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सेवा पहल आर वेज स्ट्रॉन्ग वेज आर वॉइसेस के लिए दिए गए समर्थन का स्वागत किया है। ये पहल वर्ष 2026 की शुरुआत में शुरू की गई थी। उनका कहना है कि ये पहल ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाएगी कि फर्स्ट नेशंस परिवारों को जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके। इस खबर को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS न्यूज से पेगी जाकुमुलोस और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने। और इस अंश के बाद अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार सुनेंगे नताशा कॉल की मंत्री एन एली के साथ हुई बातचीत। लेकिन उससे पहले मुझे जरूर बताइएगा कि भाई बजट का मौसम चल रहा है, तो बजट की घोषणाओं में कौन सी ऐसी घोषणा रही जिससे आप बड़े खुश हुए? 04397997667 हमारा नंबर है। जल्दी जल्दी भेज दीजिए संदेश, आपके इंतजार में हूं मैं, आपके संदेशों के इंतजार में हूं मैं। तो बस एक छोटे से अंतराल के लिए जा रही हूँ, जल्दी से वापस आती हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर वृषाली के साथ।
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। हमारी बातचीत जारी थी भाई बजट के ऊपर ही। हाल ही में आया है बजट, बहुत सारी उसमें घोषणाएं हैं। इनफैक्ट मैं आज आपसे यही पूछ रही थी कि बजट में एक कौन सी ऐसी घोषणा आई है जो आपके हिसाब से आपको बहुत खुश कर गई है। 04397997667 हमारा नंबर है। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं कि नताशा कॉल की क्या चर्चा हुई बहुसांस्कृतिक मामलों और लघु व्यवसाय मंत्री एन एली के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रमुख सुधारों पर चर्चा की है। बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उन पर चर्चा की है। स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा की है। तो ये सारी जो बातें हैं, आइए सुनते हैं इस बातचीत में और समझते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं मंत्री एली।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम बात कर रहे हैं फेडरल बजट की जो कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने हाल ही में पेश किया है। और ये बजट तब आया है जब ईरान में युद्ध और वैश्विक ईंधन संकट का अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जीवन यापन की लागत का दर्द और भी बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स इसे एक बड़े सुधारवादी बजट के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये बजट ऑस्ट्रेलिया के युवाओं के लिए टैक्स सिस्टम को कहीं ज्यादा बेहतर और बराबरी वाला बनाएगा। आपको बता दें, सरकार ने आम कामकाजी लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश तो की है, लेकिन निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। यानी संपत्ति और फैमिली ट्रस्ट से होने वाले मुनाफे पर अब कम से कम 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसी के साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट में भी बदलाव किया।

0: और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार करेंगे चर्चा फ्लू के मौसम की। बड़ी ज़रूरी बात है, बिल्कुल भी हम इसमें कोताही नहीं बरत सकते, लेकिन चर्चा ब्रेक के बाद। बने रहिए SBS हिंदी पर।
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at Kroger.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को, और अब चर्चा करते हैं भाई आपके स्वास्थ्य की। देखिए, बजट जो है ना, वो आपकी वित्तीय सेहत का एक बहुत बड़ा कारक बन सकता है। आपकी खुशी, आपकी थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी परेशानी, सबका कारण बन सकता है बजट। और उसमें कोशिश की जाती है सबके लिए कुछ हो, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि मौसम कैसा है। मौसम में इस समय सरगर्मी खैर बजट की तो है ही, लेकिन फ्लू की भी है। वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, इस पर चर्चा कर रही हैं अनीता बरार। आइए सुनते हैं ये अंश, और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी फिल्मी डायरी भी, तो बने रहिए। फिलहाल चर्चा फ्लू पर, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है।
9: इन्फ्लुएंजा एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है जो साल भर फैलता है, लेकिन पतझड़ में फ्लू की सक्रियता बढ़ जाती है और सर्दियों के महीनों में इन्फेक्शन सबसे अधिक होता है। क्या आप इस साल के फ्लू सीजन के लिए तैयार हैं? इस एपिसोड में हम तीन क्लिनिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि गंभीर बीमारी का सबसे अधिक खतरा किसे है, सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए अब बिना सुई वाला कौन सा विकल्प मौजूद है। नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। फ्लू होना एक आम बात है और बहुत तेजी से ये फैलता है। अधिकतर मामलों में इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड लोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, हालांकि कुछ लोगों को गंभीर बीमारी और हॉस्पिटल में भर्ती होने का अधिक खतरा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 2025 अब तक का सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंजा साल रहा है। इसमें 1,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। सिडनी के जनरल प्रैक्टिशनर और रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जीपीज के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल राइट कहते हैं कि बहुत से लोग ये नहीं सोचते कि इन्फ्लुएंजा गंभीर हो सकता है। इससे निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत जैसी दिक्कतें शामिल हैं।
10: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
9: फ्लू के लक्षण आम सर्दी जुकाम के मुकाबले अधिक तेज होते हैं और अधिक समय तक रहते हैं. तेज बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश हो सकती है. हवा से फैलने वाली दूसरी बीमारियों की तरह इन्फ्लुएंजा भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के गले और नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है. अच्छी साफ सफाई रखने, जैसे नियमित तौर पर हाथ धोना, खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना, फ्लू होने का खतरा कम करने और इसे फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है. और डॉक्टर राइट का कहना है कि खुद और दूसरों के लिए सबसे असरदार बचाव सालाना फ्लू वैक्सीन है.
10: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
9: बच्चे, बूढ़े लोग, गर्भवती महिलाएं और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग इन्फ्लुएंजा से गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ लोग भी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया सरकार की सलाह है कि 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को हर साल फ्लू का टीका लगवाना चाहिए. योग्य लोगों के लिए ये मुफ्त में उपलब्ध है. ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर स्टेफनी विलियम्स द्वारा ये जानकारी है.
11: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
9: अच्छा, आप कहाँ रहते हैं और काम करते हैं इस पर निर्भर करते हुए आपके राज्य और क्षेत्र की सरकार या आपका एम्प्लॉयर भी फ्री फ्लू वैक्सीनेशन दे सकता है. इन्फ्लुएंजा शॉट लेने के लिए कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर में से आप चुन सकते हैं. 2 से 17 साल के बच्चे अब बिना सुई वाली फ्लू वैक्सीन ले सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में अब नेजल फ्लू वैक्सीन 2026 से उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और पूरे यूरोप सहित दूसरे देशों में कई सालों से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल हो रही है. नेजल फ्लू वैक्सीन पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट तौर पर उपलब्ध है. कुछ राज्य इसे छोटे बच्चों और प्री स्कूल बच्चों को मुफ्त में दे रहे हैं. जांच करें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई इस तरह का सरकारी प्रोग्राम उपलब्ध है या नहीं. आपको साल में कभी भी फ्लू हो सकता है, लेकिन सर्दियों के महीने में वायरस की सक्रियता यानी एक्टिविटी बढ़ जाती है. ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर हिस्सों में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जून और सितंबर के बीच में अपने उच्चतम स्तर पर होता है. पीक सीजन से 3 से 4 महीने पहले वैक्सीन लगवाने से आपकी सुरक्षा अधिक हो जाती है. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में इन्फेक्शियस डिजीज और ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर मेरुशील बताती हैं.
12: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. When they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available to workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
9: Flu vaccine har saal alag hota hai. Ye us samay ke phele virus ke strain par nirbhar karta hai. Isiliye hame har saal flu vaccine lagwani chahiye. 6 mein se ek se bhi kam logon ko वैक्सीनेशन के बाद आमतौर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बुखार हो, थकान हो, मांसपेशियों में दर्द, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है. लेकिन फ्लू शॉट से गंभीर एलर्जिक रिएक्शन बहुत ही कम होते हैं.
12: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that it might happen.
9: ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग तरह के फ्लू वैक्सीन उपलब्ध हैं. आपका डॉक्टर सबसे सही विकल्प चुनने में आपकी मदद कर सकता है. और आखिर में, जैसा कि डॉक्टर राइट कहते हैं, अगर फ्लू वैक्सीन लगवाने को लेकर आपके कोई सवाल या चिंताएं हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें.
10: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
0: और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का. आखिरी अंतराल है जिसके बाद करेंगे चर्चा फिल्मी डायरी में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की. बने रही है SBS हिंदी पर. वैशाली बस यूं गई और यूं आई. मैंने आपसे पूछा है कि कोई गीत सुनना चाहते हैं जो पैसे शब्द के साथ आता हो. भाई बजट का मौसम है, मेरी गलती नहीं है. जल्दी से आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा. बने रहिएगा SBS हिंदी पर.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
14: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
15: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है. जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें. sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें.
0: और ब्रेक के बाद आपके फिर से है वृशाली के साथ और श्रद्धा कपूर. अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जिंदगी पर आइए डालते हैं नजर फिल्मी डायरी के पन्नों पर आज.
16: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है. मैं हूं कात्यायनी. बॉलीवुड की जिस अदाकारा की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो एक्ट्रेस बनने से पहले कॉफी शॉप में काम करती थीं. जब वो महज 16 साल की थीं, तब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था. ये सलमान खान की फिल्म थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था. प्यारी मुस्कान, आकर्षक व्यक्तित्व और उत्कृष्ट अभिनय के कारण उन्होंने लाखों दिलों में जगह बनाई है. वो न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि वे एक बेहतरीन डांसर, गायिका और फैशन आइकन भी हैं. उनकी आवाज मधुर, सुरीली और भावनात्मक मानी जाती है. उन्होंने कई फिल्मों में खुद गाने गाए हैं.

श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम शिवांगी कपूर और उनके पिता का नाम शक्ति कपूर है और उनके बड़े भाई का नाम सिद्धांत कपूर है। श्रद्धा कपूर की स्कूली शिक्षा दीक्षा 15 वर्ष तक मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल में हुई थी। उसके बाद वे आगे की अपनी पढ़ाई के लिए बोस्टन चली गईं। बचपन में जब वो फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर अपने पिता के साथ गई थीं, उसी समय उनकी दोस्ती वरुण धवन से हुई थी। वे दोनों वहाँ एक साथ में खेलते थे, फिल्मों के संवाद को बोलते थे। श्रद्धा कपूर को गायकी का भी शौक है, इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर के चचेरे भाई से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी।

0: एक्ट्रेस बनने से पहले श्रद्धा कपूर कॉफी शॉप में भी काम करती थी। इसका खुलासा खुद श्रद्धा कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तब अपना जेब खर्च निकालने के लिए कॉफी शॉप में काम करती थी। जब श्रद्धा महज 16 साल की थी तब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। ये सलमान खान की फिल्म थी जिसे श्रद्धा ने ठुकरा दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड डेब्यू किया। उनके करियर की शुरुआत साल 2010 में तीन पत्ती नामक फिल्म से हुई थी। इस फिल्म का ऑफर उनको निर्माता अंबिका हिंदुजा ने फेसबुक पर देखकर किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल तो नहीं हो पाई लेकिन श्रद्धा कपूर की एक्टिंग को काफी सराहा गया। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी। उन्होंने यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके उनकी तीन फिल्मों में काम करने को लेकर अपनी सहमति जताई। इस प्रोडक्शन कंपनी के साथ उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था लव का द एंड। उन्होंने फिल्म लव का द एंड में भी अहम भूमिका निभाई लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं। लगातार दो फिल्में फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा के करियर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इसके बाद उन्हें फिल्म औरंगजेब में मुख्य भूमिका को निभाने के लिए प्रस्ताव मिला जो कि यशराज प्रोडक्शन की थी लेकिन उन्होंने अपने अनुबंध को इस कंपनी के साथ रद्द कर दिया।
1: यूं तो मैं खुश हूं मगर थोड़ी थोड़ी घबरा रही होगा क्या।
0: उस वक्त महेश भट्ट ने आशिकी 2 में श्रद्धा को मौका दिया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद श्रद्धा रातों रात स्टार बन गईं। 2014 में फिल्म एक विलेन के लिए श्रद्धा कपूर ने गाना भी गाया था जिसके बोल थे गलियां तेरी गलियां, जो कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया था। और इसी वर्ष उनकी दूसरी फिल्म आई जिसका नाम हैदर था। इसी वर्ष श्रद्धा ने फिल्म उंगली के लिए एक आइटम नंबर डांस बसंती किया था। श्रद्धा कपूर ने फिल्म ABCD Anybody Can Dance के दूसरे भाग फिल्म ABCD 2 में भी एक हिप हॉप डांसर की भूमिका को जीवंत किया था। इस फिल्म में भी श्रद्धा कपूर ने एक गाना गाया था जिसके बोल थे बेजुबां फिर से। श्रद्धा कपूर काफी लंबे समय से फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ रिलेशन में रही थी। लगभग 7 साल से ये एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे। हालांकि इनसे पूछने पर ये दोनों एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त बताते हैं और इन दोनों के परिवारों के बीच भी काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि इनके रिश्ते में कितनी सच्चाई है इस बारे में पता तो नहीं है लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है।
2: चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
0: 2016 में श्रद्धा की फिल्म बागी हिट साबित रही और इसी के साथ अ फ्लाइंग जट और रॉक ऑन 2 ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2017 की बात करें तो श्रद्धा की फिल्म ओके जानू हाफ गर्लफ्रेंड और हसीना पारकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे असफल रही पर इन फिल्मों में भी श्रद्धा की एक्टिंग की तारीफ की गई।

0: साल 2018 में श्रद्धा कपूर ने फिल्म नवाबजादे स्त्री बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनय किया था। साल 2019 में श्रद्धा ने फिल्म साहो व छिछोरे में अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। साल 2020 में उन्होंने फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D बागी 3 में शानदार अभिनय किया था। इनकी 2-3 फिल्मों को छोड़कर लगभग सभी फिल्में सफल रही हैं। दो 2013 में उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी अभिनेत्री के रूप में 5वें स्थान पर रखा गया है। 2014 में श्रद्धा कपूर सबसे सेक्सी अभिनेत्री के रूप में 2रे पायदान पर पहुंच गई थीं। गूगल ट्रेंड में भी ये कहा गया कि 2014 से 2015 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्री हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2014 से 2015 की सूची में श्रद्धा कपूर सबसे आकर्षक महिला अभिनेत्री के रूप में थीं। 2016 की फोर्ब्स की सूची में वे 30 साल से कम उम्र की सफल एशियन हैं। तभी राज है वही सच मायने में कहलाए हैं कहलाए। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
1: और दोस्तों इसी के साथ मेरा घर जाने का समय हो गया है। मेरे पास आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि रिक्वेस्ट नहीं आई। ओ ओ ओ, ऐसा कहते ही आप लोगों के बहुत सारे संदेश मेरे पास आ गए हैं और मैंने तो एक अच्छा सा गीत आपके लिए सोचा था कि मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि हमारे पास चाहे जितने भी पैसे हों, हमारा दिल अच्छा नहीं होना तो समस्या हो सकती है। लेकिन आपके रिक्वेस्ट सॉन्ग्स मेरे पास अभी अभी आए हैं, जिसमें मेरे लिए इस समय उनको लाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आज आप ये वाला गीत सुनिए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार जब मैं आपके पास आऊँगी तो आपके रिक्वेस्ट्स लेकर के आऊँगी। और मेरे पास मीनाक्षी जी का संदेश आया है और पीयूष जी मुझसे पूछ रहे हैं एनी मूवी टिकट्स ऑन ऑफर विद कॉम्पिटिशन, कुछ होगा तो हम आप तक ज़रूर बताएंगे। और उन्होंने कहा है कि धुरंधर 2 का कोई गाना उन्होंने सुनना है, मैं अगली बार पक्का लेकर के आऊँगी पीयूष जी, या फिर आशिकी 2 का, मैं पक्की बात आपके लिए ये गीत ज़रूर लेकर के आऊँगी। लेकिन आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आज के लिए आपसे अलविदा कह रही हूँ। बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए लेकर के आई हूँ, सुनिएगा, अपने संदेश भेजते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

लूटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह, तो ढूंढ ना पाओगे प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.
2: बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल जदो मुह करे खरे लख कतल असला भी लोड़ करे टल जा छ अखा नाल कर।

0: Bollywood music.
1: Love Bollywood?
2: This is The Place, the Bollywood session on SBS South Asian.
3: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।